सोई सदा सच साहिब साचा साची नाही है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

जी तब तापै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले

दीनबंध दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए

यो गड़ गड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर स्थूला सपर कृपा दिष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशानत

सारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तो मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब हीते रहत निरालम।

दुष्ट इच्छा शवय सके ना कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर ना

जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप थे सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाट पयो मैं जोर कार, बजन गहा सिर न्याए पंथ चला तब जगत माय, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावहेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरखी देह मो कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा कि राव सस क्रूर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत, सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो ए कथा सुने अर गावै, दुख पाप तह निकट न आवै, मिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शव सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुखदावन, त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल भरी लव लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुंके चरण तर सद

मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता, गुरु बिटहो जिस दिया ए

रामदास मई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाओ, सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नाओ निधावै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां, चौहों साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया, वण छकिया, देख चलाई, तेग वाही, देख के अण डिज कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिना सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, कुपरियां लवाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा ने कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं आ रहा, सिखी केसा सुवासा संग निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ अरशिया रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा

इतनी सेवा प्रबंध कर जी कीर्तन कर दिया प्रभा दी माफी बख्शनी आउन भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जी पितृ बाणी कथा राही जोड़न देना पास प्यास का सरवण करो जी।

हस हस गावे सब परिवार। जन्म मरण दुख कटिए, जमन का भी तो दुख है ना, बड़ा भारी दुख होंदा है। जदों जन्म लैंदा वो हो करके रोंदा, बड़ा कुछ करदा है, परिवार की कहिंदा वधाई होवे, काका जमिया बच्ची जमी है, रोन झोना, भैणा जिहड़ियां मिठे मिठे दे गीत गा लैंदियां ने, घर विच खुशियां आ गईयां, वह तो दुख नू रो रहा है, रब का नाम भुल रहा है, याद करके रो रहा है, पर सहजे सहजे उन्हूं आपां भी भुल जाणा है। रोवे रतन गवाए माया मोह ज्ञान गुवार, ओ रोवे दुखी अपना, हासो हासो गावे सब परिवार। सबना मन वधाइया, रोन झुंझन नड़ा रोन झुनकारा, नानक दादक सोहेले देण सीसा, बाल प्यारा चुखो बिंदक बिंद कर, बिंदो कीता परबत पारा, सत संतोख विसार विसारा, काम क्रोध विरोध विच लोभ मोह हंकार पसारा, एदे विच फस गया ते मेरे गुरु दा नाम भुल गया, ते फिर आउण जाण दा चक्कर बन गया। गरीब नवाज जी कहिंदे अज तुहाडे दर ते आए सचे पातशाह, जन्म मरण दुख कटिए प्यारे। हे मेरे प्यारे सचे पातशाह जी, मेरा जन्म ते मरण दा दुख जड़ा है ये भारी कट दियो, ते कटिया

सोग के मिटैया के दो मानी महा मान हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की

कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। मैनू पता लग जावे मेरा प्यारा किथे है, मैं मिल पवा किथे मिलदा है। गुरु दी संगत विच उहदा मिलाप हो जांदा है। सुंदर सोगर सुजान प्रभ मेरा, इत्थे विश्राम देना है। जीवन दर्श दिखाए ओ पातशाह जी अपने दीदार।

बात बड़ी कठिन है, मन्या जावे। जे ते चंगा हो गया है मैं ही कीता है, जे किधरे बुरा हो गया रब कर गया, आ क्यों हो गया। पर साहब जी कहिंदे ने तुम करो भला, ना बिल्कुल नहीं, हम मैं कहन वाला, तुम करो भला हम भलो ना जाने, बिल्कुल नहीं है। पर जो रिजल्ट यही हमेशा निकलता है, बंदे नू लगता तो जरूर है भी इदा क्यों होया, पर जद उहदा रिजल्ट आउंदा फिर कहिंदा परमात्मा तू उदो चंगा ही कीता सी। भैणा नू याद आ जाना, तुहानू दिन एक दिन उंगल वड्डी वाली गल सुनाई सी ना राजे दी, तुहानू याद आ गई है भला होया। हम बैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधु हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साजन वाजे जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिदाते, तुम रखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन कर पछ। साहब जी कहिंदे भला प्यारे तेरी अमर रजाए, अमर नाम हुंदा हुक्म दा, जिहड़ा तुहाडा हुक्म है जुगो जुग अटल है, तुहाडे हुक्म अगे इनकारी नहीं हो सकदी, तुहाडे हुक्म अगे इनकार नहीं है, वह होवेगा होवेगा। मेरे वर्गे का हुक्म चले मैं ते सवेर तो शामा ना पैण दिया, सबनी छाला हां जी मारियां, पर करता ओही हुंदा है ना, करता करे सो होए, हुंदा ओही है। कई बार तुहानू पता है इधर नू जाना है, इंडिया दी टिकटां बणियां रह जांदियां ने, जाया नहीं जांदा, मता करे पूर्व कै ताई पछम ही लै जात, जो अंदर उपयो ठाकुर मेरा होए रही हो। फिर ओदी रजा आ गई है ना, ओदा हुक्म आ गया है। तुसी कई बार तकिया होवेगा प्रशादा तुहाडी थाल विच है, तुसां ने ग्राही भी तोड़ी है, ये वाहिगुरु जी की मौज हुंदी है, तुहाडे मूंह तक अद तक आई हुंदी है, पर कोई फोन ऐसा आ जांदा जे बंदा उत्थे रख के ते बाहर निकल तुरदा, बहुत वार वरतदा है, यह सब ओदा हुक्म वरतदा है, यही तो मनना औखा है ना। साहब जी कहिंदे हुक्म ना जाने, बहुता रोवै अंदर धोखा, नींद ना सोवै, जे तन हुक्म है चले रजाई, नानक दर कर महल बुलाई, नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहज सुभाए, जेडे ओदे प्रेम दे विच सहज ज्ञान विच मस्त हो गए ने, उन्हां नूं नारायण पति परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, रंग उन्हां दे अंदर प्रेम करके प्राप्ति होगी। आओ प्रेम दे विच सिर्फ दो वारी आखो तां फतेह बुलावांगे। सारी संगत बोलियो।

ऐसा गुरु नानक दा दर है, बख्शीशां दा दर है, झोलियां भरन वाला दर है। ते कबीर साहब फिर एक बड़ा सुंदर बचन लिखते हैं, 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं बेनती करांगा कि पहले दास बोलेगा, पिछे भाई गुरमुख माई पाई सारे हाजरी लवाओ, सतगुर सच्चे पातशाह नूं ये तरला करिए गरीब नवाज, तेरा दर ऐसा है, तेरे दर तो खाली कोई नहीं जाता, असी ये दर छड़ के होर किधरे नहीं जाना, आओ करो कृपा जी।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदारी यो पिंड सा

जय मस्कल होवे यत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पाव सूह कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन पर है हर का नाम जपत निस्तर है।

तर संघ सहाई सो आवे न चीत जो बैराईता स्यो प्रीत बरुआ के गृह भीतर बसे अंत केल माया रंग रसे द्रि कर माने मन प्रतीत काल ना आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू झुगत बिहाने कई जन्म नानक राखिले हो आपन कर कर्म

देव अष्टपति जिह प्रसाद शतीह अमृत खाहे तिस ठाकर कौ राख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गात पावे जिह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसनाड़ पहर सिमरह तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाड़ पितंबर हंधावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे जिह प्रसाद सुख

सब वतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु मह समानी साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवहि बस पंचा सा संग मृत रस पुंचा सा संग हो सब की

नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग तिथि का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी ये अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात।

परमेश्वर के प्यारे श्लोक करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल महियर सोय अष्टपदी करन

पूजान श्लोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बिलहार अष्टपदी।

नाम हरवात एव तन संचो भो भगवंत संजना काने बलमते काह राख मन माय सर्व रोग नानक मिट जाय। जेह तन को चार कोट उठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे। जेस सुख का नित बाछे मीद सो सुख साधु संग प्रीत। जेह सोबा को करहे पलि करनी सा सोबा पर हर की सरनी अन की पावे। रोग न जाय रोग मिटाय हर वखद लाए।

पूर्ण गुरु मंत साध संत प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास रोग सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक आपे ही फिर जा बस्तपदी।

सफल जीवन सफलता का सांग जाके मल्ला गहरांग जय जय शब्द नाह दुबाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे कृपाल महात के माथे नान कुदरे तन कै साथ नान कुदरे तन कै साथे सरन जोग सुन सर

करते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभीखे बिमारी प्रभु की हो तद कर हो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोधन दान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए

मूर्ख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा सोच न हो भई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होहे तो एक ना चल नाल किस चियारा।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमु भक्सार।

मन की तापाओ अंतर्गा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण किते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुभान सदा मन चाओ कमण सो वेला वक्त कमण कमण थित कमण वार कमण से रुत्ती माहो कमण जित हुआ आकार वेला पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखण लेख कुरान सितवार ना जोगी जाने रुत महो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किब करे आखा किब सा लाही क्यों वरनी किब जाना नानक आखण सबको आख्या एक दू एक सियाणा।

है, अजीत है, अभीत है, त्रमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लम्ब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, जीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वभाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वभौणे, अनंगी अनाथेन्द्र संगी प्रभाते, नमो भान भाने, नमो मान भाने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान भाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रभाते, समस्ति विभूते कलंकं बनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वं परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाने, नमो अस्त्रपाने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षीय प्रमीय भोगी भुगते, नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रे देव सत धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाह, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग सेनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओघर्ता, परंग परम परमेश्वर प्रोषपालंग, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग, अशेदीय पेदीय नामंग अकामंग, समस्त पराजी समस्त तामंग, तेरा जो रचाचरी छंद, जले है, थले है, पीता पे है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, भेस है, भुजंग प्रयाद छंद, अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमास्तवंग नरनाथे, नमास्तवंग परमाथे, नमास्तवंग गंजे, नमास्तवंग पंजे, नमास्तवंग अकाले, नमास्तवंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वेशे, नमो राज राजे, नमो सा साजे, नमो सा शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोगे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृशंग, नमो सर्वग्रसंग, नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीविंग, नमो बीज बीजे अखिज्य बीजे समसंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा ऋषदंग निवासी, चरपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल, जोगे अचल भोगे अचल, राजे अटल साजे अखल, धर्मंग अल्लाह कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग पुराणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद, आदुर्बनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान्तरमान देव भेवाद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल, जतर ततर विराज हिव तूतरूप्रसाल, नाम ठाम न जात जाकर जन नाम ठाम न जात जाकर उपरंग न रेख, आदि पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख, देश और न पे जागर उपरेख न राग, जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम का विहीन पेख तामू न जाए, सर्वान सर्वतर्मान सदैव मानता है, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप

करता करते हैं, धरनी तरते हैं, मतेश्वर है परमेश्वर है, करता करते हैं अमृता अमृत है, अजवा करते हैं अमृता अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नरपनायक है, सरपायक है, पंजन है, अरगंजन है, रवतापन है, जब जापन है, अकलंग करते हैं, सर्वा करते हैं, करता कर है, हरता है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म बास है, जस के जस है, भुजंग प्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक श्री शांत अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनि अबोनि नारागे न रंगे न रूपे न लेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजायब घनी में हरियं करें करीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तवा प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोगर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण बधि के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रती बेन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप पलिपत ने आप शीसना जात बिचारे एते पय तो कह पय भूपतंत को नागे पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाजत रो ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भुख भवान के भूपत गौन गए नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजय बनंद गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नान दयादम दान संयम नेम नेक बसेखा वेद पुराण कदेव ग्रां जमीन समा जवान सवान के पेखा पवनहार जति जतार सब सुचार हजार को देखा श्री भगवान भजे बिन भूपत एक अरती बिन एक न लेखा शुद्ध सबा दुरंद बास सा सना दुरजान दरांगे भारी गुमान भरे मन में कर बरबत बंग हलेना हलांगे तुवर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलांगे श्री पर श्री भगवान कृपावन त्याग जहान निदान चलांगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की धार बशैया तोर देश मिलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सो बात निचक चार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भिख भवान जपाएंगे जीव जिते जाल में थाल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातुन पापन गे बुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फ्रैजग सतर सभय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातब जाऊन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर भिषण सची पात।

बास की अभिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साज कहूं सुन रहे हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो काहुल पाहन पूज तरह सिर काहुल लिंगरे लटकायो काहुल खरवाची दिशा में कहु पशाह को शीस निभायो कुबदान को पूजत है बास कुमृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो कुबदान को पूजत है पास कुमृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सभी

प्रतवारा अमरे दुष्ट सभा तुम गावो आभात मोहे बजावो सुखी बस मोरो परवारा सेवक सिख सभाय करतारा मोर अशा निज करत कर सब भैरन को आसंग रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे ब्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याहू जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सातरु हमारे मारिया है आप हाथ है मुझे उबर है मरण काल का त्रासन भर है हुजो सदा हमारे पच्छा सरिय सुजू करे और रिक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन मन दुष्टन के हंता तम हो पुरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब रोग सवारा नमस्कार ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंद जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंचरिया सूला सबर कृपा दुष्कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के बट बट की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आ कर कर तु हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन सठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही

रहो हर नाले साचे साहिबा गया नाही करते राय करता तेरा है सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिबत सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिन गए मन मसया बाजे शब्द घनेरे कहे नानक सचे साहिब गया नाही करते राय साचा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया करसान सुख मनाए वसया जिन शाह सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटो जिस दिया वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित करता हरिया पंच दूत वस कीते काल कंटुक मारिया तुर गर्म पाया तुत जिन गाओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तितगर अनहद वाजे साची लवाए बिन देह निवाणी देह निवाणी लवाए बाजो क्या करे विचारिया तुदवास अमृत गुए नाही कृपा कर बनवारिया इसनु हरथाओ नाही शब्द राग सवारिया कहे नानक लवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कर कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचवा सचा सवारिया

ने सतारा समुंद सागर जिन खिन वाह तारा कोई होआ कर्म रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम तिहाया बंधन काटन हर स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी। मन रंगिया जावे गल तां मन दी है ना, जिन्हां दा मन लग गया गुरु दे चरण कमलां नाल उन्हां दी सोग दी अग पो नहीं सकदी। उह तां बंद बंद कट्टिया जावे मन रंगिया गया है कोई सोग नहीं है, खोपड़ा लाया जा रहा है। कमाल दी गल जे किधरे तस्वीर वेखो भाई साहब जी, भाई साहब जी भाई तारू सिंह जी दे खून पुरपड़िया चो दोनों पास्यों किवें कन्ना लागू चौंदा आ रहा जे, किवें जलाद ने भाई साहब जी दे केस पकड़े हुए ने, मत्थे दे लागू रंबी रख के मोची वाली थोड़ा ठा ठा मारदा होया किवें पुरपड़िया तक केस लिया रहा है। पर मुख तो गुरु की अमृत बाणी का जाप चल रहा है, मन रापै मन रंगिया होया है। गरीब निवाज कहते जिन्हों का रपया है चरण कमलों सोग की अग नहीं व्यापदी। देवी दास भीम चंद का वजीर है, भीम चंद ने गरीब निवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वाले सू लैण वास्ते भेजिया, तो जिदन आया है ना देवी दास कलगीधर पातशाह जी के दीदार किए तो गुरु का हो गया, तो जदों वापस परतिया ना उस वेले जाके भीम चंद के कोल मेरे कलगिया वाले बाजा वाले सचे पातशाह जी की उस्तत की रज रज के, तो जिहड़ा विरोधी हुंदा है उहनूं उस्तत कित्थे चंगी लगदी, जे अहलकार नूं कहिंदा पकड़ लो इहनूं। जिस वेले पकड़ लिया है मुश्कां बन्न दित्तियां, कह लगा सजा दे तेनूं वड्डियां तों वड्डी देंगा, तू मेरे विरोधी का नाउं लै रहा है। कह लगा पहाड़ी ते लै जाओ, उच्चियां पहाड़ियां ने कहलूर दियां गर्म सलाइया करके लाल अग वर्गिया करके इहदे अखां विच धस दिओ, जिवें सुरमा पाई दा इउं कर दिओ। ते जिस वेले सलाइया पाउण लगे पकड़िया गया चरण कमल जाका मन रापै, तां गुरु खालसा जी देवी दास वजीर ने मेरे कलगिया वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु बोलो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सचे पातशाह जी दे चरणा दा ध्यान रख लिया। साहबाने चरणा ते सहारिया कष्ट, तत्ती वाह नहीं लगन दिती, कोल आया साहबां दे चरणा ते फलूवे पए ने होर शरदा बनाउणी है, सही जे जे कोल होके कहन लगा गरीब निवाज चरणा ते की होया जे, प्यारे भाई दया सिंह गुरु का खालसा कोल है। सवाल होया गरीब निवाज जी कह लगे तेरा दुख असी अपने चरणा ते सहार लिया। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरु। चरण कमल जाका मन रापै सोग अगण तिस जन न व्यापै। सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे। भई साधुआं दा संग करदिआं रब दे प्यारिआं दा संग करदिआं नाम दा रंग चढ़ जांदा, संसार तो तर जाईदा। साध संगत दी महिमा बड़ी बेअंत है, तुहानूं इक पौड़ी सुना के ते मैं अगाह तुरन दा जतन करां। सुख राजे हरी चंद घर नार सुतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुना। गुरबाणी गुरबाणी धन गुरु का शब्द, सुख तां बड़े ने महला विच राजे दियां सेजां ते, पर राणी नूं जिहड़ा सुख संगत विच लभदा उह महला विच नहीं जे लभदा, जिहड़ा संगत विच चौंकड़ा मिल के लभदा है उह सोहणियां सेजां ते नहीं मिलदा। जिहड़ा गुरु दे लंगरां विच सुख मिलदा उह बाहरले पदार्थां चों नहीं मिलदा।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आई।

वही है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्म है जे बुझ जाए, चाहूं मैं कहे ना कोई।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाख सार असंग मौल्य विलायतार तार

निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंग अलवड़ हत्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़े आर कुड़े फिराहे

स्वा सात बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला भक्त कमण कमण सत्य कमण वार।

निरपौ नाम जपू हर रंगी पार धन दुख किश पाप ना फिड़ी जम जंदार न आवै नेड़े।

निरपौ भय मन हुए हौ मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल भौ पाया हर गुण गाया हर विखै राम हदूरे।

अंतर सोई रास सोई जाने जीव अगमोच सह मेरा खड़गट अंतरवर्ती नेरा सदा अलपत जी का दाता को विरला आप बचाने जीव परमेने के नसानी मान एको सच्चा हुकम बजानी सह संतोख सदा तृपता दे अंत खासम के पाने जीव हते रिते प्रभ देव दिवनारे मरण जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दाद के प्रभ अपने हर कीर्तन संग माने जीव माज महला पांचवा के निगरा गोपाल गोसाई गुर के चरण बसे मन माए अंगीकार किया दिन करते दुखा डेरा ढाया जीव मान धन वस्या सचा सोई बिकुरा दान दिसे कोई दूत दुश्मन सब सजन होए एको स्वामी आह जीव जो कुछ हेरे स्वापे आपे बुद्ध सियानब कछु ना जापे आपने संतनु आसाई प्रभ भरम भलावा लाया जीव चरण कमल जन काया द्वार वाट पैर राम नाम अपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व सदा समाया जियो माज महला पंजमा जो सच मंदिर जित सच त्याये सूरदास हेला जित हर खून गाये सत अर्थ आवे जित वसे हार जन सचे नाम बिटो करवाण जियो सच बढ़ाई किम न पाई कुदरत कर मन कया जाय त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच सबद मन मानो जिय सस लाए बड़ भागे पाई गुर प्रसादे हार गुण गाये रंग ते तेरे तुद पावे सच नाम ने साणो जिय सचे अंत न जाने कोई तांत न दे सचा सोई नानक सच त्याए साधे अंतर जामे जाने जी जाणो जिय माज महला पंजवा रैन सुहा विदे सुहाला जब अमृत नाम सासंग मेला कड़ी मोहत सिमरत फल वंज जीवन सफर तसाही जीव सिमरत नाम दुख सवला ते संतर वार सा हर प्रभ साथे पै पहो परम खोया गुर पूरे देख सबनी जाए जीव प्रभ सिमरत वडू ज पारा नौलित परे तेरे परे भंडारा आदवांत मद प्रभ सोई दू जल विन लाए जीव कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक सा जाचे साधन वाला दे दान नानक जन्म मांगे सदा सदा ध्याय जीव माज महला पांचम ऐते तू है आगे आपे जी जंत सब तेरे तापे तुत बिन अवर न कोई करते मैं तड़ उठ तुम्हारी जीव रसना जप जप जीव स्वामी पारवरा प्रवंत्र जमी जिनसे व्याद नहीं सुख पाया सो जान मन जो हारी जीव नाम बखद जिन जनते पाया जन मरण जन्म जन्म का रोग पाया हर कीर्तन गावे दिन राति सफल अज कार्य जियो जित तार अपना दास प्रहार्य काट काट अंतर पार ब्रह्म नमस्कार एक सभिन दूजा एक सभिन और दूजा नहीं बाबा नानक हे मसारे जियो माज महला पांचमा मान दान रता राम प्यारे सर्व दिन अपने बारे आठ भैर गोविंद गुण गाये बिसर न कहूं जासा सासा जियो सोए साजन मेत मास मेत प्यारा राम नाम था संग विचारा साधु संग तरिये सागर कटिये जम की फसा जियो चार पता थर की सेवा पार जात जब अलग बेवा काम करो किल वेख गोर काटे पूर्ण हुई आसा जियो पूर्ण भाग बहे जस प्राणी सात संग मेरे सारंग पाणी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान ग्रहत उदासा जी माज महला पांचा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भक्ति प्रटाया सत संत संग मेल हर हर जपिया बिन से आसरोगा जी जाके ग्रह नाभ निध हर भाई

0: प्रेम भगत जा जिसके मन लगे हार, गुण गावे आंदे नित जागी वहां पकड़ तिस स्वामी मिले। जेते मस्तक लहना चरण कमल भगता मन बूटे, बिन परमेश्वर सगले मूठे संजना की तूर नित वाचे नानक सचे का गहना। उठत बैठदार हर गाये जिस मृत भरने जपाये नानक प्रभु दयाल तेरा गीता सहना। भाग महाजस्पतिया महला पहला कर
1: शब्द रंगाहे हुकुम सुबाए सच्चे दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पतिया मनिया। हम वारी जियो वारी शब्द सुहामनिया अमृत नाम सदा सुख दाता है गुरमति मन वसामनिया। रहाओ ना को मेरा हो किश केरा सच्चा ठाक तह मेरा हो मैं कर कर जह कनेरी कार अवगण पछो तामने। हुक्म पछाने सुहर गुण बखाने गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सच्चे छुट्ट नाम सुहामने आ मन मुख भूला ठहन।

यो मनियार जी कोई गुरमुख वेखे मोर्चा ना लगे से हमें सुखे आंदन बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावनिया बिन सतगुर क्यों ना देखा जाए गुर कृपा ते कर आप दिता देखाए आपे आप आप मिल रहा सजे सज समावनिया गुरमुख होवे सुविख

0: जो सत्र ते तेन सचो पावे आपे रे रचोतावे गुर के सब दसदा सच जाता मिल सचे सुख पावणिया कूड़क सत्र न मैं लागे गुर बसे अंध जग निर्मल नाम बसे कट अंतर ज्योति ज्योत में लावणिया त्रै गुण पड़े हर तत् न जाने बोल मुल मुलो भले गुर शब्द न बछाने मोह पे आपे के सूचे नाही गुर शब्दी हर पावणिया
1: त्रिपद माया मन मुख न बुझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े हर एक न जाने मेन बुझे दुख पावणिया जात पावै ता आप मिलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए नानक नावे की सच सच्ची वड्याई नमो मन सुख पावणिया माज महला तीजा निर्गुण सरगुण अपे सोई तत् पछाणे सो पंडित होई

कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्म कौन वे मुखिया, किन विद मिलिए किन विद विछरा, ए विद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जत तरता दब त्रैता।

अनंता नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजमा प्रभ अवनासी ताका काड़ा हाँ हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुखदाता तू करे सोई सुख पावण्या हों वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावण्या।

प्रभ मिलो प्राप्त होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटे हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़िया तिस जिस अगे सब निवन हर साजन दावण लगिया किसे न देई बन माणक मोती नाम प्रभु ना लगे ना ही सन रंग सबे नारायण जेते मन भवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपना सही कही है धन अपन लिया जे मिलाए बिछड़ क्यों रवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन

सो लुणे कर्म सुंद राखित नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत हे पादो नरक न पाइय गुर रखन वाला हेत सुन प्रेम सुम ओ माड़ा क्यों मिली हर जी अजाए मन तन प्रयास दर्शन घणी कोई आन मिलावै माए संसाई प्रेम के हो दिन कह लागा पाए वैण प्रभ क्यों सुख पाइया दूजी नाही जाए जिनी चाख्या प्रेम रासे तृप्त रहे अगाए आप त्याग विनती करहो आप त्याग विनती करा लेहो प्रभु ललाए जो हर कंत मिलाइया से बिछड़कत है ना जाए प्रभिन दूजा कोई नानक हर शरण आए असु सुखी वसंधिया जिन्ना मैया हर राय कत्त कर्म कमावणे दोष

पैया हो। वोक्त सुखंदा सुहंदा सर्वसुख जिस बख्शे बेप्रभाव माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम ते आए सुन।

दया प्रवान जिसन देवे दया कर सोई पुरख जान जन्ना मिलया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरबान फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आई संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड़पागणी वर पाया हर राय मिल सैया मंगल गा।

सागर ते रखियन बहुर न जन्मित हाय जेह बाई अनेक गुण तरे नानक जरनी पाए फलगुण नित सलाई है जिसनु तिल न तमाई।

सहज सुभाए मेरा सौ मिलाए दर्शन रूप अपार। मछली हो वा जल बसा जी जंत सब सार, और वार पार मेरा सौ वसे ओ मिलोगी बाप सार। नागन हो वा धर वसा शब्द वसे।

आनंदन आनंद पया वडभागी सब आस पुजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब

महापदार्थ अमृत राजा बेखम सागर तेज दरे नानक जाको नदर करे गौड़ी मलावना।

निर्भर हो, चरण कमल प्रभर दिन वासा, सकल दोखा हो अनास असमान देगा, साजे साखी मन मेटेगा, महाग्रीव मन साधनाथ, नानक प्रभ रखे देहात, गौणी मल्ला वजा हर नाम मंजन कर सूझे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहो, हर के चरण हृदय में वसे, जन्म जन्म के किल नसे, साध संग के तन मल पाया, जम कम मारिंदाया, मन बच क्रम गोविंद द्वार, ताते छिड़ो बिक संसार, कर के पाप प्रभ की नो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौणी मल्ला बजा पौ सर नाई जिन राते, मंतन शीतल चरण राते, पै भंजन प्रभ मन साई, डरपत डरपत जन्म बहुत जाही राओ, जाके हृदय बस और नाओ, सबल मनोरथ तांगे पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सांग्रास, मीत साजन सका प्रभेक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौणी मल्ला वजा बार राख्योर दे संभाल, कर आए गोविंद नाल, हर नाम संतन के संग, मंतन रता राम के रंग राओ, परमा साधी संग धरिया, जन्म जन्म के खिल का सब हिरिया, शोभा स्वत ना भगवंत, गुरमुर एकांत मलमंत, चरण कमल हृदय में जाब, नानक

अचर्ज वरदाव वाणतरण त्रिपवन पूरन गोपाल ब्रह्म प्रसार जी संग दयाल कौन सा कथ निसार मान लियत जस सृजनार।

रातान जन जागे हर संग राता सहज कर वसे हर संग राते ब्रह्म बनसे हर संग राते मातोत्तम होए हर संग राते नर्वस होए कहो नानक तिनको बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी मल्ला वजा उद्धम करता सीतन भाए मार्ग चलता सकल दुखाए नाम जवता मन भयनंद रस गाए गुण परमानंद कि ब्याह कुशल कराए बेटता सा संग कई बुलाए रहो नित नित भिख दस तन मतक चरण कमली बस गोविंद की टैल सबल एह काया संतों साध परमत भाया जन की किन्नी आप सुए सौक पाया लगता सेवाए आप क्या दे अपे भय कृपा दान की सरनी भय जो चाहत सोई जब आया तब ढूंढन कहा को जाया ऐतर भय बसे सुखासन गुरप्रसाद नानक सुखवासन गौड़ी मल्ला बजा कोट मजन की न सुनान ला कर कर की न दान जामन वसर को नाओ सकल पवित गुण गाय गोपाल

प्रभु जवारे नानका मांगत नाम आधारे राग गौड़ी पुर में महला पंजवा एक ओंकार समझादा कमन कोन प्राण पत मिलो मेरी माय राहो रो बहिण बद बोलिणी मोह वर दर्शन दो त्याई नान धर्मना जो बनवाती मोह नाद की करो सुमाई खोजत खोजत भई विरागन प्रभु दर्शन को हावे तदनाई दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी जलम जाई गौड़ी मल्ला बजा प्रामिल में को प्रीत मन लागी पाए लगो मोहे करो मेहंदी कहु संत मिले बट भागी लाओ मन अरपो तन राखो आगे मन की मात मोहे सगल जागी जो प्रभु की हर कथा सुनाए अंत न फिर विषय विरागी पूर्व का कर्म कर जब रटे भेटो पर रस विरागी मिटे देर मिल तर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी मल्ला बजा निकसरे पंसी सिमर पाख मिल साधु सरन का पूर्ण राम रतन हीरे संग राग राव प्रभु की कोई तृष्णा रह पंकज आति कण मोगी वास कट नार जग गुरु गोविंद चरण कमल तंग करुण वास करके पा गोविंद प्रपीतम दीननाथ सुनो दास करके लियो नानक स्वामी जियो बिन सब तुमरी रास गौड़ी मल्ला बजा हर पे कन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चित मंदिर रहनी हो गई सो है